0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल. इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live fan. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सिंगापुर। आपकी सुबह और दिन को खुशनुमा बनाने के लिए आ गया है आपका दोस्त समर। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यादों का कारवा, और आज चलेंगे हम 1973 की फिल्मों के सफर पर। क्या साल था भाई, गुड, कमाल की सुपरहिट फिल्में आई थी इस साल, और मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन भी इसी साल बने थे। तो चलिए, बहुत मजा आने वाला है आज कसम से। सबसे पहली फिल्म जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है बॉबी, हिंदी सिनेमा इतिहास की मोस्ट रिफ्रेशिंग और यंग लव स्टोरी। बॉबी तो बॉबी थी बस। मेरा नाम जोकर का सपना टूटने के बाद शोमैन राज कपूर को एक इंस्टेंट हिट चाहिए थी, और उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को एज अ हीरो इस फिल्म से लॉन्च किया विद एलिगेंट डिंपल कपाड़िया। अमीर गरीब के बीच की इस प्रेम कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन इस जोड़ी का जादू, फिल्म का ट्रीटमेंट और सुपरहिट म्यूजिक इस फिल्म को खास बनाता है। ये 1973 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, और हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 20 फिल्मों में इसका शुमार होता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, सोवियत रूस की भी ये सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से रही है। फिल्म का एक सीन है जिसमें ऋषि कपूर पहली बार डिंपल से मिलते हैं, और वो जैसे ही गेट खोलती हैं तो हाथ में लगा बेसन उनके बालों पर लग जाता है। सेम सिचुएशन राज कपूर नरगिस की पहली मुलाकात में हुई थी रियल लाइफ में, और इसीलिए उन्होंने इसे फिल्म का हिस्सा बनाया। फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, और हम तुम कमरे में बंद हों से लेकर ना मांगू सो ना चांदी, सब कुछ था इसमें कमाल का। लेकिन सबसे बड़ा कमाल था आंखियों को रहने दो आंखियों के आसपास, आए हाय क्या गाना था। हालांकि मैं मान नहीं सकता कि आपने बॉबी देखी नहीं होगी, लेकिन देख भी रखी है तो फिर से देख लीजिए, ताजी हवा का झोंका ये फिल्म। इसके गाने मैं आपको सुनवा देता हूँ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। यह 24 घंटे सातों दिन आपके साथ रहने वाला आपका अपना बॉलीवुड रेडियो, सिंगापुर में हिंदी का पहला बॉलीवुड रेडियो। स्टे कनेक्टेड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मजी 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूँ यादों का कारवां। और आज हमारा कारवां गुजर रहा है 1973 के साल से, 1973, कमाल का ये साल। अब जो अगली फिल्म जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है यादों की बारात। हिंदी सिनेमा इतिहास की ये फिल्म परफेक्ट मसाला फिल्म कही जा सकती है। सब कुछ बैलेंस था इसमें। कहानी सलीम जावेद ने लिखी थी। तीन भाई जो बचपन में बिछड़ जाते हैं और फिर एक गाना जो वो बचपन में गाते थे वही गाना उन्हें मिलवाता है। इस बीच रोमांस होता है, एक्शन होता है, ड्रामा होता है, कॉमेडी होती है, सब कुछ होता है। धर्मेंद्र, जीनत अमान, विजय अरोड़ा नए नए आए थे। विजय अरोड़ा को नहीं पहचाने आप? आपने रामानंद सागर वाला रामायण देखा है? उसमें जो मेघनाथ बने थे ना, वो है विजय अरोड़ा। तारिक हुसैन, नासिर हुसैन साहब के बेटे, और अजीत, और अपने आमिर खान भी थे इस फिल्म में भाई। उस समय वो सिर्फ 8 साल के थे। तारिक हुसैन के बचपन का रोल किया था उन्होंने। ये फिल्म उनके चाचा नासिर हुसैन ने बनाई थी और मसाला फिल्मों की ट्रेंड सेटर मानी जाती है ये फिल्म यादों की बारात। इस फिल्म के बाद ही जीनत अमान और नीतू सिंह बड़ी स्टार्स बन गई थी। विजय अरोड़ा वाला रोल अमिताभ बच्चन करने वाले थे पहले, लेकिन उस समय तक वो फ्लॉप हीरो माने जाते थे। सोचिए आप कि अमिताभ बच्चन को ये रोल भी नहीं मिला, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया कि भैया ये इस आदमी से मत कराओ। फिर इसी साल जंजीर रिलीज हो गई और बाकी की कहानी आप जानती हैं। वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यादों की बारात फिल्म का म्यूजिक दिया था पंचम दा ने, और चुरा लिया है तुमने जो दिल को से लेकर मेरी सोनी मेरी तमन्ना, और यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। और एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, आपके कमरे में कोई रहता है, I really loved it, बहुत ही कमाल का, बहुत ही लाइवली गाना है। और जहां तक चुरा लिया है तुमने का सवाल है, तो वो तो आज भी बेस्ट ऑफ रेट्रो माना जाता है। तो चलिए, इतने अच्छे जब गाने हैं इस फिल्म के, तो कंप्यूटर जी से दरख्वास्त है कि एक नहीं दो गाने तो सुनवाइए। रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ, बने रहिए। यादों का ये कारवां गुजर रहा है 1973 से, और ये यादों की बारात से आपके लिए गाने। स्टे कनेक्टेड।

0: बरसों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप?
2: Yeah!

0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

यादों का कारवां लेकर एक बार फिर से हाजिर है समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। वेलकम बैक। आज हम 1973 के साल से गुजर रहे हैं यही चर्चा में। अगली फिल्म जो इस साल आई थी जो बहुत ही चर्चा में थी वो थी दाग। इस फिल्म ने बॉलीवुड में यशराज फिल्म्स की नींव डाली थी। एक प्रोड्यूसर के तौर पर ये यश चोपड़ा साहब की पहली फिल्म थी। फिल्म के फाइनेंसर थे गुलशन रॉय, जिन्हें लगता था कि फिल्म ज्यादा चलेगी नहीं। फिल्म को काफी लो प्रोफाइल ढंग से रिलीज भी किया गया, लेकिन 6 दिन बाद ही फिल्म के प्रिंट 3 गुना करने पड़े। राजेश खन्ना दो बंगाली हीरोइंस शर्मिला टैगोर और राखी के साथ पहली और शायद आखिरी बार दिखे, शायद नहीं पक्का पक्का आखिरी बार दिखे। इस फिल्म ने राखी और राजेश खन्ना दोनों को जमकर तारीफें दिलवाई। फिल्म तो सुपरहिट थी ही, गाने भी जबरदस्त हिट थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था और अब चाहे मार उठे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर दी और जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोगे, तो बहुत ही कमाल का गाना था। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तुम्हें बता दूं, किशोर दा का ओह वन ऑफ माय फेवरेट। अब जब इतने जबरदस्त गाने किसी फिल्म में हो तो फिल्म तो हिट होनी ही थी। इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक और परफॉर्मेंस हर लिहाज से ये एक क्लास फिल्म है। दाग देखने लायक, सुनने लायक। आपको बता दूं कि यश चोपड़ा साहब इससे पहले अपने भाई साहब बीआर चोपड़ा साहब के लिए काम करते थे, लेकिन एक दिन वो पहुंचे और कहा कि उनकी शादी हो गई थी। इस दौरान तक 1973 तक पामेला चोपड़ा से उनकी शादी हुई, तो अब जब एक नई जिम्मेदारी उनके सर पर आई तो उन्हें लगा कि अब उन्हें अलग से कुछ करना चाहिए। अपने भाई साहब के पास पहुंचे, उनसे कहा कि भाई साहब मैं एक अलग प्रोडक्शन कंपनी खोलना चाहता हूं। बीआर चोपड़ा साहब ने उन्हें कुछ भी समझाया नहीं, रोका नहीं, बस इतना कहा याद रखना अब सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, और ये कहकर वो वहां से चले गए। उसके बाद यशराज फिल्म्स की नींव ढल गई और ये फिल्म सामने आई। बहुत ही कमाल की फिल्म है। चलिए फिलहाल तो इस फिल्म के गाने सुन लेते हैं और इसके बाद जब लौटूंगा तो अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म का जिक्र करूंगा। बहुत ही कमाल की फिल्म थी, बताऊंगा कौन सी है। स्टे कनेक्टेड।

0: ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो है ये रेडियो मसी 24/7 लाइव है। इसका नाम और मेरा नाम है समर। शो का नाम है यादों का कारवां। आज हमारा कारवां गुजर रहा है 1973 के साल से 1973 और इसी साल वो फिल्म आई थी जो वन ऑफ माय फेवरेट है, दैट इज अभिमान। अमित जी और जया जी की लव स्टोरी के दौर की ये फिल्म एक तरह से दोनों ने ही प्रोड्यूस की थी। इसका बैनर था अमिया, जिसमें अमीन लिया गया था अमित जी के नाम से और या था जया जी का। बहरहाल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चली नहीं, लेकिन इस फिल्म को याद रखा जाता है दो वजहों से। पहला, इसका म्यूजिक जो सचिन दा ने तैयार किया था और हमेशा की तरह हर गाना कमाल का था। याद कीजिए, मीत ना मिला रे मन का, तेरी निंदिया रे तेरे मेरे मिलन किए रहना, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। इस गाने के साथ एक दिलचस्प वाक्य जुड़ा है। ये गाना एक्चुअली मुकेश साहब गाने वाले थे, लेकिन वे कॉन्सर्ट के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। वो जब आते शहर में तब ये गाना गाते, लेकिन अब शूटिंग करनी थी, क्या करें, तो डमी गवाया जाता था पहले, आज भी गवाया जाता है। तो ये डमी गवाया गया मनहर उदास साहब से। मनहर उदास पंकज उदास के भाई हैं और उनसे ये गाना गवा लिया गया। अभी डमी इसलिए गवा लिया करते हैं क्योंकि इस पर कम से कम शूटिंग तो शुरू हो जाए, असली ट्रैक बाद में बनता रहेगा। यही हुआ, जब मुकेश साहब वापस शहर में आए तो उन्हें ये गाना सुनवाया गया कि सर ये गाना है, इसे आपको गाना है। तो उन्होंने ये गाना सुना और कहा कि यार अब मेरी जरूरत है ही कहाँ, इतना अच्छा गाया इस लड़के ने। क्या नाम है इसका? मनहर। बहुत ही अच्छा, कमाल के लोग थे वो, सोचिए आप उस जमाने में। वरना आज तो भैया दूसरे को क्रेडिट लेने नहीं देता कोई, और न्यू कमर को इसीलिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले लोग कितना सपोर्ट करते थे। इस फिल्म को एक्ट्रेस बिंदु की वजह से भी याद किया जाता है। इस फिल्म से पहले तक बिंदु जी वैम्प या कैबरे डांसर के रोल में आती थी। पहली बार उन्होंने एक पॉजिटिव कैरेक्टर किया और ऋषिदा ने इस कैरेक्टर को इतना खूबसूरती से उभारा है कि आप फिल्म देखकर ही इसे महसूस कर सकेंगे। तो देखिएगा अभिमान, फिलहाल तो सुन लीजिए आप अभिमान के एल्बम से ये गाना। रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ। जब लौटूंगा तो बच्चन साहब की एक और फिल्म का जिक्र करूंगा, वही फिल्म जिसने साबित कर दिया कि वो एंग्री यंग मैन है। यू गॉट इट राइट, आप समझ गए मैं कौन सी फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ। लौटूंगा तो बताऊंगा। स्टे कनेक्टेड।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

लीजिए लौट आया हूँ मैं अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म का जिक्र लेकर। मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आज यादों का कारवां के जरिए आपको लिए चला हूँ 1973 के साल से। ये फिल्म है जंजीर। इस फिल्म ने सिनेमा के पर्दे का गुलाबी रंग लाल रंग में बदल दिया था। उस दौर के हिंदुस्तान के यूथ के गुस्से को अमित जी ने पर्दे पर कुछ ऐसा जिया कि वो खुद और ये फिल्म एक कहानी बन गई। जंजीर ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ट्रेंड सेटर फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा की धारा ही बदल दी। सलीम जावेद ने इस कहानी को लिखा और फिल्म अमित जी से पहले उस दौर के तमाम बड़े स्टार्स को ऑफर की गई थी लेकिन सबने मना कर दिया था। सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के लिए कहा। सलीम जावेद ने इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया और ये फिल्म अमित जी को मिल गई। हीरोइन का रोल मुमताज को दिया गया लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया तो जया जी को रोल मिल गया। दोनों की प्रेम कहानी उस समय परवान पर थी ही। फिल्म रिलीज हुई और विजय, शेर खान, तेजा, रॉबर्ट सब सुपरहिट किरदार बन गए। फिल्म का म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिया था और उन्होंने दोस्ती को लेकर अब तक का सबसे दमदार गीत रचा इस फिल्म में। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यूं तो जंजीर की राह पर और भी कई फिल्में बनी, बाद में बनती रहीं, लेकिन जंजीर ने अमित जी को सुपरस्टार बना दिया और इसी के साथ रोमांस के किंग राजेश खन्ना का दौर भी खत्म होने लगा। जब लौटूंगा तो उस फिल्म का जिक्र करूंगा जिसने इस दौर को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। स्टे कनेक्टेड।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम बैक, समर है मेरा नाम। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपको एंटरटेन करना है मेरा काम, और ये मैं कैसे करता हूँ, यादों का कारवा के जरिए। जी ये मेरे शो का नाम है, आपको लिए चलता हूँ बीते साल के गुजरे जमाने के बेहतरीन फिल्मों के उस दौर में, जब वो कमाल का म्यूजिक हुआ करता था, जबरदस्त फिल्में होती थी, जो आज भी हमारे साथ हैं अपनी कहानियों के साथ, अपने किस्सों के साथ। बस वही लेकर हाजिर हो गया हूँ। इस बार मैं बात कर रहा हूँ नमक हराम की। जी 1973 का जिक्र चल रहा है, तो नमक हराम भी इसी साल आई थी। ऋषिकेश मुखर्जी की एक और सुपरहिट और कंटेम्प्रेरी फिल्म थी ये। ये फिल्म उस दौर में बढ़ते ट्रेड यूनियन मूवमेंट और मुंबई की कपड़ा मिलों के बैकड्रॉप पर बनाई गई थी। कहानी एक अंग्रेजी फिल्म बैकेट पर आधारित थी, जो 1960 में रिलीज हुई थी। ऋषिदा ने इसे भारतीय परिवेश में फिल्माया। आनंद के बाद ये दूसरी फिल्म थी जिसमें ऋषिदा ने अमिताभ बच्चन साहब और काका को साथ लिया, और इन तीनों की ये एक साथ आखिरी फिल्म भी थी। फिल्म सुपरहिट रही कहानी के लिहाज से भी और म्यूजिक के लिहाज से भी। पंचम ने नदिया से दरिया, दरिया से सागर और मैं शायर बदनाम, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं जैसे गाने इस फिल्म के लिए बनाए थे, और किशोर दा ने क्या जमकर इन्हें गाया है कि आज भी इन गानों की तासीर बनी हुई है। अमित जी और काका के रिश्तों में कड़वाहट का दौर इसी फिल्म से शुरू हो गया था। बता दें कि फिल्म के अंत में वैसे तो अमित जी के कैरेक्टर को मरना था, लेकिन काका ने एंड बदलवा दिया और लोगों की सिंपैथी खुद ले गए। बहरहाल बड़े सितारों की बड़ी बातें भाई, आप तो फिल्म और इसके गानों का मजा लीजिए। यही वो फिल्म थी जिसके बाद अमिताभ बच्चन साहब का दौर शुरू हो गया और राजेश खन्ना साहब का सूरज अस्त होने लगा था। तो चलिए फिलहाल तो ये गाने बड़े मस्त हैं, ये सुन लेते हैं आप। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है समर, लौटूंगा एक और फिल्म का जिक्र लेकर। स्टे कनेक्टेड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

1973 का साल है चर्चा में। आप रेडियो मसी 24/7 लाइव पर सुन रहे हैं यादों का कारवां मेरे यानी समर के साथ। वेलकम बैक। अगली फिल्म जो इस साल आई थी जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा वो थी हंसते जख्म। चेतन आनंद की ये उन फिल्मों में से है जो अपने नरेशन और म्यूजिक के लिए याद की जाती है। फिल्म में नवीन निश्चल हीरो थे और चेतन आनंद की फिल्मों की परमानेंट एक्ट्रेस प्रिया राजवंश उनकी हीरोइन थी। एक्चुअली ये उनकी पार्टनर भी थी। साथ में थे बलराज सहनी और नादिरा। एक डिफरेंट स्टोरी विद डिफरेंट ट्रीटमेंट। फिल्म का म्यूजिक मदन मोहन साहब ने दिया था और सारे गाने साहब उस दौर में भी सुपरहिट थे और आज भी कमाल के सुपरहिट हैं, लाइवली हैं, जबरदस्त है। तुम जो मिल गए हो, ये तो गाना कमाल ही है। इस गाने का तो पिक्चराइजेशन ऐसा है कि बारिश के मौसम के लिए इसे परफेक्ट सॉन्ग माना जाता है। बाकी लता जी की आवाज में बेताब दिल की तमन्ना यही है, ओहो क्या गाना है। और आज सोचा तो आंख भर आई, ये इसी फिल्म का गाना है भाई साहब, इनका कोई मुकाबला नहीं है साहब। फिल्म भी देखी जा सकती है और म्यूजिक तो आपके कलेक्शन का हिस्सा होना ही चाहिए, क्योंकि एक और गाना है जिसका जिक्र मैंने नहीं किया। ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। भैया वो इसलिए है क्योंकि आप रेडियो में से 24/7 लाइव सुन रहे हैं। यहाँ पर मजा ही मजा है, मस्ती ही मस्ती है। सुनते रहिए, मेरा नाम है समर, मिलता हूँ आपसे इन गानों के उधर। स्टे कनेक्टेड।

आ गए आप, मैं आपसे पहले पहुंच चुका हूँ। मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां चल रहा है और आज 1973 यानी 1973 की फिल्मों का जिक्र हो रहा है। अगली फिल्म थी ब्लैकमेल, मतलब उस जमाने की जो बेस्ट फिल्में थी उनमें से अगली फिल्म जो है वो थी ब्लैकमेल, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ आज। 70 के दशक के टॉप फिल्म मेकर्स में से एक थे विजय आनंद और उनकी ये फिल्म ब्लैकमेल उनके अंडररेटेड कामों में गिनी जाती है। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी जैसे एक्टर्स के साथ विजय आनंद ने एक अलग ही रस्म की लव स्टोरी बनाई थी जो एक साइंस फिक्शन से होती हुई रोमांस और अंत में थ्रिलर बन जाती है। फिल्म का म्यूजिक दिया था कल्याण जानन जी ने, जो जॉनी मेरा नाम के बाद एक बार फिर से गोल्डी से यानी कि विजय आनंद साहब से जुड़े थे और इस जोड़ी ने पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, कितना खूबसूरत गाना ये दिया था, और मिले मिले दो बदन ये लास्ट में आता गाना क्लाइमेक्स पर, बहुत ही कमाल का गाना है ये, कम सुना होगा आपने लेकिन बहुत ही जबरदस्त गाना है ये। ये गाने इसी फिल्म का हिस्सा थे। पल पल दिल के पास तो एवरग्रीन सॉन्ग है, इसे हिंदी सिनेमा का सबसे अच्छे ढंग से पिक्चराइज्ड लव सॉन्ग कहा जाता है। बहरहाल धर्मेंद्र और शत्रु साहब को उनके एक्शन पैक्ड रोल से कुछ अलग ढंग के रोल में देखना है तो ब्लैकमेल देखिएगा आप, दोनों के दीवाने हो जाएंगे आप, ये तय बात है। तो चलिए जब मौका मिलेगा तब आप ये फिल्म देखेंगे, मुझे तो मौका मिला है, मैं आपको इस फिल्म के गाने जरूर सुनवाऊंगा। आप सुनते रहिए यादों का कारवां समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवघर रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

वेलकम बैक सिंगापुर। कैसा चल रहा है आपका ये खूबसूरत कारवां? आप हमें कभी बताइए तो सही हमारे फेसबुक पेज बनाकर। मेरा नाम है समर और आज 1973 के इस बेहद खूबसूरत साल से इस कारवां को आपके साथ गुजार रहा हूँ। अगली फिल्म थी जो इस साल आई और जो बड़ी कामयाब रही, बड़ी मकबूल रही, अनामिका उसका नाम था। संजीव कुमार, जया भादुड़ी की ये सस्पेंस थ्रिलर थी। स्टार आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन ने ये फिल्म बनाई थी। फिल्म का प्लॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग था और जया भादुड़ी जैसी एक्ट्रेस को बाहों में चले आओ जैसा सेंसुअस सॉन्ग करते देखना भी काफी इंटरेस्टिंग है। बहरहाल फिल्म अच्छी चली और खूब जला पंचम का म्यूजिक भी, जो आज भी सुपरहिट है। तेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। बाहों में चले आओ, वन ऑफ द बेस्ट कंपोज्ड सेंसुअस हिट्स ऑफ पंचम संग बाय लता जी। आज की रात कोई आने को है रे बाबा रे बाबा रे बाबा, ये भी इसी फिल्म का गाना था। कहानी में कई ट्विस्ट है और ये फिल्म देखकर ही मजा आता है और इसे संजीव कुमार जया भादुड़ी की सबसे अच्छी फिल्म भी कहा जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से कोशिश उनकी ज्यादा बेहतर फिल्म थी, लेकिन कमर्शियल सिनेमा की अगर बात करें तो ये फिल्म ज्यादा बढ़िया है। बाहों में चले आओ को लता जी अपने सबसे अच्छे गानों में मानती हैं और अपने लाइव शो में इसे जरूर गाती थी उस जमाने में। आप सुनेंगे इस गाने को तो कंप्यूटर जी बाहों में चले आओ, नहीं वही रहिए बाहों में चले आओ गाना लगा दीजिए। आप तो चलते ही आ रहे हैं, चढ़े ही जा रहे हैं। आप सुनिए सिंगापुर और एक और फिल्म का जिक्र करूंगा लौट कर। स्टे कनेक्टेड।

while you are relishing all these amazing, amazing गानास जो समर जी यहाँ पर आपके लिए प्ले कर रहे हैं, why am I here? I am here to tell you कुछ खास बात आम के बारे में. जी हाँ, बिल्कुल. जब ये सीजन आता है आम का, तो दिल में बहुत सारे इमोशंस आते हैं, घर की याद आती है. बट नहीं, नॉट एनी मोर सिंगापुर, बिकॉज ggmartonline.com आर हियर विद अस सैटिस्फाइंग हमारी आम वाली क्रेविंग. दैट इज करेक्ट भाई. योर फेवरेट मैंगोज फ्रॉम इंडिया, स्ट्रेट फ्रॉम देयर फार्म, केमिकल फ्री, एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक. ggmartonline.com पर जाकर आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं. अल्फांसो जो मैंगोज हैं, दे आर डायरेक्टली सोर्स्ड फ्रॉम देवगढ़ एंड रत्नागिरी, एंड दे आर नाउ अवेलेबल एट ggmartonline.com. भाई फ्री डिलीवरी जो है, ऑर्डर्स अबव $76 वो तो है ही है, बट लिमिटेड सीजन है, अनलिमिटेड क्रेविंग है, तो जल्दी से लॉग ऑन करें, आज के आज ही रजिस्टर करें. एंड सभी जितने भी मस्ती फैमिली हैं, इफ यू आर ट्यून्ड इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो व्हाट, यू कैन गेट दैट 10% ऑफ. जी हाँ, बस कोड यूज करें new10 NEW 10, एंड बिल्कुल वो 10% का ऑफ ले और आम ऑर्डर करें आज के आज ही. ggmartonline.com, दैट्स वेयर यू गॉट टू गो. एंड राइट नाउ आई गॉट टू गो सो दैट आपके समर जी कैन बी बैक एंड यू कंटिन्यू लिसनिंग टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

बाहों में बुला रहे थे, अब कह रहे हो हाँ गले लग जाए। वेलकम बैक सिंगापुर, मैं तो चाहता हूँ कि आप आके गले लग जाएं। लेकिन ये मेरी अगली फिल्म का नाम है जिसका जिक्र मैं करने वाला हूँ। यादों का कारवां में आप हैं समर के साथ और रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आज यादों का कारवां गुजर रहा है 1973 के साल से। हाँ गले लग जाए हमारी अगली फिल्म, मसाला फिल्म थी और मसाला फिल्म मेकर कौन, मनमोहन देसाई। उनकी एक सुपरहिट फिल्म है ये जिसमें ऋषि कपूर, उनकी एक सुपरहिट फिल्म है ये जिसमें शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारे थे। याददाश्त खोने का फॉर्मूला इस फिल्म में भी था और वैसे ये उस दौरान खूब चल रहा था, कई फिल्मों में ये देखने को मिल रहा था। फिल्म की राइटर मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभा देसाई ही थी। ये फिल्म यहाँ तो चली ही लेकिन अफ्रीकी देश अल्जीरिया में भी ये फिल्म 40 साल से बेहद पसंद की जा रही है। आज भी वहां के लोग इस फिल्म के दीवाने हैं। फिल्म का म्यूजिक एक बार फिर पंचम का है और गाने याद कीजिए आप। याद नहीं आ रहा आपको, मैं बताता हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, गला थोड़ा मेरा खराब है, बाकी गाना बहुत ही बढ़िया है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, ये भी इसी फिल्म का गाना था। न कोई दिल में समाया, ये भी इसी फिल्म का गाना था। तो पंचम की धुनों का जादू एक बार फिर से लोगों के सिर चढ़ा और फिल्म हो गई सुपरहिट। तो आ गले लग जा से आ रहे हैं आपके लिए ये गाने और मैं आपसे अब विदा लूंगा। इजाजत दीजिए, अगली मुलाकात तक मेरा इंतजार कीजिएगा और जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि अपना ख्याल रखेगा, अपने अपनों का ख्याल रखेगा, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखेगा। मोहब्बत बनके किसी के दिल में बस जाइएगा और मुस्कान बनके किसी के चेहरे पर सज जाइएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार एंड टेक केयर।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल,
2: आज फिर तुम पे।
0: इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
3: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
7: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.
8: Brothers for Life, Mika Singh.

0: होना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा।

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
3: बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। आज मेरी आवाज भी थोड़ी सी अलग ही होती है। हेलो हेलो जी, हम मस्ती टॉप चार्ट से बिल्कुल पहुंच चुके हैं। हम लेबर डे है तो लेबर हम अकेले क्यों करेंगे।
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती
3: टॉप 20 पर आपका स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल अकेली ही हूँ मैं। अबला नारी यहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर कोई अपनी बॉडी पर ध्यान दे, जिम विम जाए हर फ्राइडे शाम को और हम यहाँ पर काम करें। वेलकम वेलकम, इट इज द फर्स्ट ऑफ मे। जी हाँ, सुबह ही हम मिले थे, मैंने कहा था शाम को मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ में मस्ती टॉप चार्ट्स अकेले अब मन ही नहीं लगता है। क्यों जी, कुछ बोलो ना जी, बोलो तो
4: जी। जी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे तो जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया है लेडीज एंड जेंटलमैन हाल कि मैं कौन से वाले यमराज से भाग के खुश हूँ। तो मेरा कंफ्यूजन वो है कि मैं अपने जिम वाले ट्रेनर से भाग के खुश हूँ कि ये जो इन्होंने धर दबोचा है यहाँ पर अपने बॉस का वीटो कार्ड प्ले कर उससे खुश हूँ। आई हैव नो आइडिया एट ऑल ऑन लेबर डे।
3: धर दबोचा, आज बस इसी बारे में बात करेंगे कि धर दबोचा क्या होता है, जो कि बहुत ही कानपुरिया भाषा में यहाँ पर बोला गया है। तो चलिए भाई, जैसे कि आप जानते हैं मस्ती टॉप चार्ट से हमें लगा कि आप सारे अपने अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में ऐशे कर रहे हो लॉन्ग वीकेंड पे, तो मैं क्यों अकेले यहाँ पर बैठूं। तो जैसे ये निकली बाहर, मैंने भी इसको धर दबोचा और मैंने कहा आना 20 गाने साथ साथ सुनेंगे।
5: तू दिल है मेरा, तू घर है मेरा।
3: और पहला गाना इन्हीं को डेडिकेट करते हुए मेरे हम नवा जुबिन नौटियाल की आवाज में, गाना नंबर 20 क्यों अंतरा मेरी हम नवा।
4: जी जी, इन्होंने कहा धुरंधर के गाने तुझे पसंद है ना, आज साथ में सुनते हैं।
3: पूरी एल्बम सुना डालूंगी, धो डालूंगी, आ जा।
6: Trending song number 20.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: आइए जी आइए, बिल्कुल इन गानों के इस पार इंतजार। आज मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, मुझे बड़े मजे आ रहे हैं इस बात को बोल बोल के मस्ती टॉप चार्ट्स में। जी हाँ, गाना भी अब दूसरा चलेगा और यहाँ पे लोग भी दो ही बात करेंगे।
1: They are fresh, they are hot, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top 20.
0: तो अंजना, तुम्हारा क्या ख्याल है इन टॉप स्पाइसी एंड हॉट गानों के बारे में? आपने तो 20 की लिस्ट देख ली और आपको तो पता आज क्या होने वाला है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज टॉप 20?
2: सबसे पहले तो मैंने ये क्रैक कर लिया है कि इन्होंने आज ही मुझे क्यों रोका है यहाँ पे, बिकॉज़ शी हैड टू फीचर द रियल लेबरर ऑफ द सेशन, तो वो यहाँ पे इनके साथ बैठा हुआ है जो शो कर रहा है इन्हीं के साथ। बट देन टॉकिंग अबाउट द टॉप 20, बिकॉज़ आई आल्सो ट्यून्ड इन एंड आई काइंड ऑफ लिसन टू द सॉन्ग्स एंड ऑल, मुझे ना दो से इनफैक्ट ज्यादा ही ऐसे गाने हैं मुझे लगता है कि यार ये क्यों ही है, like why is it even there, even sometimes at number 20 also, but then I know that there are no options also ki kya rakhoge aap 20 pe, and another fact that I am completely biased towards Dhurandhar ke album, and it is a very logical and legit bias of mine, because bhai kaise aap compete karoge un gaano ke sath,
0: bilkul
2: like they have made some good music,
0: bilkul absolutely. So bhai Dhurandhar ke gaane to aayenge and rightly so top 10 mein hi aate hain, kam hi aise koi gaana hai jo ki 10 se pehle aa jaye, khair hain but wo isliye hai because aur koi gaane hi nahi hai market mein more than anything else.
2: Yeah,
0: so coming up next is गाना नंबर 19, जी हाँ, और अंतरा जी से पूछेंगे हम व्हाट डज शी थिंक ऑफ दिस वन। ए खुदाया ए खुदाया, गिनी विद सनी 2 के साउंडट्रैक से, क्या ख्याल है आपका?
2: वो जो मैंने जिस ख्याल से शुरू किया था, दिस इज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स,
0: बिल्कुल पसंद नहीं है उसको, लेकिन 19 पे टिका हुआ है पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी। यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर आप बता सकते हैं कौन सा गाना नहीं होना चाहिए टॉप 20 में, एंड विच गाना शुड एक्चुअली रिप्लेस दैट गाना। आई लव टू हियर, राइट? पता तो लगे,
2: ये तो कर दो, ये तो कर ही दो।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song number 19.

0: Mugdha. Only on Radio Masti 24/7 Live.
1: For show timings, check out the Radio Masti 24/7 Live app. RJ Mugdha ke saath. Gossip bhi, masti bhi, sarcasm bhi. Sab kuch sirf Masti Hangout.
2: Some stories are easy to tell. पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
4: Check it out.
5: And on Radio Musti 24/7, full to Bollywood show is time पर, जी हाँ, मस्ती टॉप चार्ट्स पर आज आ रहे हैं मजे, क्योंकि कंट्रोवर्सीज जब हम डिस्कस करते हैं ना ऑफ माइक एंड ऑन माइक, खैर फर्क तो बहुत होता है, ऑन माइक हम कैसे बोलते हैं, ऑफ माइक आप सुन नहीं पाओगे, नहीं सुन पाओगे।
6: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
5: Masti Top 20 पर अगला गाना हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अंतरा, what do you think about this controversy जो 2025 में हुई थी, when Anu Kapoor, Anu Kapoor found himself in the middle of a major controversy. आपको वो गाना होगा याद, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए।
7: Who doesn't know?
5: भाई मजा, Who doesn't know that? Exactly, हुस्न का ही मजा लेना तो आंखें से क्यों लें? ये this was the question, okay? And at that point, एक podcast में इन्होंने ऐसा कहा था, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है, Oh my God, what milky body she has. Exactly. और उसके बाद, of course, there's a major backlash. तो क्या ख्याल है तुम्हारा दूधिया बॉडी वाले कमेंट के बारे में?
7: अनु कपूर जी, मतलब अनु कपूर जी, जैसे हम लोग ना यहाँ पर, मैं और रेनू का जब भी शो करते हैं, आपको आइडिया भी नहीं है हम लोग कितना अपने आप को कंट्रोल करते हैं बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग, क्योंकि असली चीजें तो बाहर ही नहीं आती है। आई थिंक अनु कपूर जी का वो स्लीप थोड़ा सा हो गया वैसे,
5: एग्जैक्टली
7: वो सही वाली फीलिंग जो अंदर से एकदम ऐसे आ रही थी ना, तो वो वैसे बहते हुए आ गई।
5: बिल्कुल, और क्या होता है ना, कभी कभी जब स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, उसके बाद सबसे पहले कोई लड़का अगर लड़की के बारे में बोलता है तो वो बोलता है ये तो मेरी बहन जैसी है। अब अनु कपूर जी जल्दी से फटाफट बोले, कितने साल की होगी वो, 28-30, ये तो मेरे बच्चों जैसी है। संदेह से आते हैं ऑन नंबर 18 फॉलोड बाय अ दूधिया बदन वाला गाना, कॉकटेल 2 के साउंडट्रैक से, कमिंग अप जब तलक। तो भाई बड़े क्या आगे अंतरा
7: जी, जी मतलब स्मार्टनेस वही है जब स्टॉप कर दिया जाए,
5: वही चुप हो जाओ,
7: तो आगे बोलना ही नहीं चाहिए था कि भाई बस हो गया, एक चीज बोलती अब रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ।
5: अब करते रहो एक्सप्लेन, तुम्हारा कौन सा बच्चा दूधिया बदन बुलाते हो तुम सुबह उठ के उसको।
7: वही
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 18।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Musty Song of the Hour.

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: हाँ भाई, मैंने कहा ना कि टॉप 10 में तो भरे ही हुए हैं हमारे धुरंधर के गाने, लेकिन कभी कभी 20 से लेके 15 के बीच में भी कहीं ना कहीं एक आ तो आ ही सकता है। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, हम सोचते हैं कि इतना नीचे कैसे गिर गया ये गाना। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप। क्यों अंतरा, कैसा लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारी पसंदीदा एल्बम का एक गाना नंबर 16 पर है?
4: बहुत ही खुशी हुई, मेरे तो खुशी के आंसू नहीं रुक रहे। अरे फाइनली खुल गया दरवाजा।
3: इनको इसी बात की खुशी है कि इनका बच्चा क्लास में कुछ तो आया है, चाहे नंबर 20 पर भी आया हो।
4: सीरियसली, है ना?
3: That is true. तो भाई ये है कि जैसे ही धुरंधर के गाने शुरू होते हैं ना, वैसे ही हमको ध्यान आता है रणवीर सिंह एंड हमजा अली मजारी किस तरह से आता है। उस दिन मैं किसी से बात कर रही थी, यंग लड़कियों से बात कर रही थी अंतरा, तुम मान नहीं पाओगी।
4: हाँ।
3: मैंने उनसे पूछा धुरंधर देखी है, एंड ऑल ऑफ देम सूंड, ऐसी आवाज आई, मतलब यू कांट इवन से हाँ या ना। इट वाज लाइक हाँ। तो मैंने कहा क्या हो गया, सब ठीक तो है? बोला कि नहीं यार, इनफैक्ट हमें पता लगा है कि जो हमारे कर्नल साहब हैं, तो ये अपना अर्जुन है ना, ये डीजे भी करता है, ठीक है, ये डीजे भी बना हुआ है, बहुत सॉलिड डीजे बना हुआ है, और हर अपने कॉन्सर्ट डीजे वाले परफॉर्मेंस के बाद में वो दोनों हाथ ऊपर करता है लाइक अ वी शेप्ड, या शर्ट खुली होती है और उसके पूरे के पूरे सिक्स पैक सामने से दिख रहे होते हैं, और बाल उसके लहरा रहे होते हैं बड़े बड़े पंखों के पीछे, और मतलब वो आदमी, मैं मैं इसको लड़कियों की क्या बात बता रही, इसकी खुद की हालत देखो।
5: पल पल ही ना अब तेरे बिना मुश्किल सा लगे।
3: कहते हैं ना रेडियो की भी आंखें होती हैं, बोलो ना।
4: लेबर डे पे लेबरर को बुला के ऐसे टॉर्चर करने का कौन सा मतलब, ये मतलब मस्ती टॉप 20 में फ्राइडे की शाम को ऐसे डिस्क्रिप्शन कौन देता है? अच्छा हुआ मैं ट्रेडमिल पे नहीं थी इस टाइम पे, वरना मैं तो गिर ही जाती वहीं पे।
3: बिल्कुल, ये क्या चल रहा है? बट इमेजिन वी शेप्ड, अपने दोनों हाथ ऊपर करके, शर्ट खोल के, अपने 6-8 पैक दिखा के, बाल उड़ते हुए पीछे करके, हमारे अर्जुन साहब। और वहां पर लड़कियों ने पता है क्या कहा कि हम इनके शो की आगे आगे की टिकट क्यों लेते हैं, ताकि और कुछ ना सही, इनका पसीना ही हम पर गिर जाए।
4: ये आपने मेरे को स्पेसिफिकली बोला हुआ है,
3: नहीं बोल सकते, लेकिन दिल में कुछ आ रहा है तो रोको मत, बोल दो।
4: बहुत सारा बहुत सारा
3: फिलहाल तो
4: छोड़ के
3: फिलहाल तो हम सुनेंगे गाना नंबर 16। रुक जा
2: Trending song number 16.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.
2: एंड ऑन मस्ती टॉप चार्ट्स। जी हम इस घंटे के अंत में पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन आपको गाना नंबर 15। ये क्यों इतनी खुश हो जा? ये अभी तक वही सोच रही है, वो गाना जो मैं हर बार अपने लिए गाती हूँ, आज इसने अपने लिए गाया है कि घर कब आओगे।
3: They are fresh, they are hot, they are spicy and they are happening. Join us
4: on. मुझे इस गाने से याद होता है कि कैसे, इट्स अ वेरी रेडियो फ्रेंडली गाना। जब भी जॉब को जल्दी घर जाना हो तो मुझे लास्ट में लगा दो।
2: 10 मिनट का गाना ना। अरे सच में जब ये टॉप 3 में होता था ना, मुझे बड़ी खुशी होती थी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ये। हाँ अभी मेरा मन कर रहा है कि इसको किस दिन मेरे को जल्दी जाना हो तो मैं इसको गाना नंबर 1 बना दूँ, क्योंकि मैं फिर कम से कम 12-13 मिनट पहले निकल सकती हूँ। हाँ लेकिन अंतरा, बिटवीन यू एंड मी, मैंने आजकल एक नया तरीका भी निकाला है, ठीक है? मैं गाना नंबर 2 और 1 दोनों ना गेस करने के लिए छोड़ के पहले ही निकल जाती हूँ, ठीक है? ये भी, लेकिन कुछ लिसनर्स हैं हमारे जो मुझे फटाफट बोल देते हैं निकल गई भागने की जल्दी। ले तेरा एक और गाना आ गया 15 नंबर पर धुरंधर के साउंडट्रैक से, मैं और तू।
4: गिव्स मी एन अमेजिंग आइडिया रेणुका,
2: बताओ
4: हाउ अबाउट आज इन लोग को 3 गाने गेस करने को बोले।
2: आई थिंक बिल्कुल, मेरे को तो लगता है टॉप 5 इन्हें बोलने चाहिए गेस करने के लिए, और उसके बाद 5 के 5 इनको बता के इन्हीं में से है, बस हमें भेजो आंसर, भेजो आंसर, भेजो और फिर हम चले जाते हैं, हम आधे घंटे पहले निकल सकते हैं। हाँ ये सही है, ये सही है। लेबर डे है वैसे भी भाई, पूरा दिन की छुट्टी ना सही, एटलीस्ट एंड के आधे घंटे की तो बनती है, राइट?
4: हाँ बनता है, बनता है।
2: Alright, on Radio Masti guys, गाना नंबर 15 जैसा कि अभी अभी हमने सुनाया आपको, बिल्कुल यही वाला है आज। अब शुरू करते हैं हमारी वही वाली कॉन्टेस्ट, हमारा वही वाला सवाल आपके लिए कि भाई कौन सा गाना होने वाला है आज नंबर 1। आज क्योंकि हमारे शो पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी गेस्ट आई हुई है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इनकी पसंद नंबर 1 जो है वही रखेंगे आज नंबर 1, ठीक है अंतरा? हाउ इज दैट?
4: Done. I want to change it.
2: हाँ, yes. आज मार खानी है तो तू खाना, मैं क्यों खाऊं हर बार?
5: Trending song number 15.

0: चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स. द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009.
1: अमिताभ बच्चन. मस्ती टॉप चार्ट्स पर अमिताभ बच्चन की बात हो जाए तो मुझे लगता है कि मेरा शो और भी चरम सीमा पर पहुंच चुका है. हेलो, गुड इवनिंग. और आज लेबर डे के महत्वपूर्ण दिन पर मेरे साथ एक और लेबरर है अपार्ट फ्रॉम जस्ट मायसेल्फ.
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन.
3: मालिक आवाज नहीं आ रही. मालिक ये जो है ना, हमसे थोड़ी गलती हो गई. मालिक हम छूट गए. हम ऐसा लग रहा है हम स्टूडियो में छूट गए हैं. हमको जाना था. हमको बोलो जिम जाना था.
1: रोलो रोलो बेटा, यही है जिम, यही है तुम्हारा काम. ही भगवान होता है, काम ही सब कुछ होता है. ठीक है अमिताभ बच्चन जी,
4: अगर ये ऐसा होता तो कितना अच्छा होता कि मैं इतनी बातें करती हूँ, यही मेरा कार्डियो हो जाता. अगर तो मतलब मेरी तो जिंदगी की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाती.
1: तुम्हारी जबान का कार्डियो आज यही है. अमिताभ बच्चन की बात कर रही हूँ, बॉलीवुड लेजेंड. जी हाँ, मोटिवेशन के नाम पर तो ये इंसान, मैं कहती हूँ 83 की एज में अगर मैं इस स्टाइल से बैठ के माइक के सामने ऐसे मतलब कर रही होंगी काम, तो मुझे लगेगा मेरा जीवन भी सफल हो गया. एक्चुअली यू नो व्हाट इज पर्सनल फिलॉसफी ऑन वर्क लाइफ एंड स्टेइंग एक्टिव रिगार्डलेस ऑफ एज, दैट्स व्हाट ही इज बीन टॉकिंग. 60 साल हो चुके हैं उनको कैमरे के सामने, आप सोच सकते हैं इस टाइम पर. ही जस्ट शेयर्ड अंतरा दैट द कोर ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ. एंड आई थिंक समटाइम्स यू नो मे बी इट्स यू नो मी ऑल्सो गेटिंग ओल्ड, कि मेरे को इन बातों में आजकल, जब मेरे को जावेद साहब से मैं बात कर रही थी, मुझे लग रहा था लाइक द पर्ल्स दैट वर फ्लोइंग आउट ऑफ हिज माउथ. यू नो आई फेल्ट लाइक यार वाओ मैन, मैं इनसे घंटों बात कर सकती हूँ. अमिताभ बच्चन सेज वर्क बी द एसेंस ऑफ लाइफ, हैव वर्क विल ट्रैवल नॉट टू सम एडवेंचरस डेस्टिनेशन, ट्रैवल फॉरवर्ड इन लाइफ. सो वर्क, वर्क टू गेट अ लिविंग, वर्क ऑन योर बॉडी, व्हाटएवर बट वर्क. क्या ख्याल है आपका?
4: सो वेरी ट्रू, दैट इज सो वेरी ट्रू. एक टाइम था जब द सेम थिंग माई डैड यूज टू से, राइट, कि तुम लोग पीछे पड़े रहते हो कि रिटायर हो जाओ, रिटायर हो जाओ, अब आराम करो. मैं क्या करूंगा घर पे?
1: क्या करूं?
4: आई डोंट नो व्हाट टू डू. आई ओनली नो हाउ टू वर्क एंड आई वॉन्ट टू कीप वर्किंग ऑल द टाइम.
1: आई हैव सीन पीपल हु रिटायर्ड एंड देन देयर हेल्थ हैज डिटीरियोरेटेड सो बैड कि मतलब गाने गलत बनाने लग गए हैं यार. देखो मोनिका ओ माय डार्लिंग गा रहे हैं. व्हाटएवर,
4: आई लव दिस सॉन्ग. ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 14.

0: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pen. RJ gaya exit par. और गाने आ गए नॉन स्टॉप म्यूजिक, नॉन स्टॉप मस्ती, ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
2: चेक इट आउट।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 13।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
4: और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो इंसान मेरे साथ यहाँ पर शो को होस्ट कर रहा है आज के दिन में, जो मेरा यहाँ पर मेहमान बना है, जिसकी डिमांडें ये हैं कि मैं इंतजार करता हूँ हर हफ्ते सिर्फ और सिर्फ धुरंधर के एल्बम का, लेडीज एंड जेंटलमैन जरा इनसे पूछिए इन्होंने धुरंधर फिल्म देखी भी है कि नहीं।
5: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
4: रेडियो मस्ती 24/7 सही पहचाना हमने, चल रहा है यहाँ पर रेणुका के स्टाइल का। लेकिन आज तो हमारे गेस्ट हैं, तो गेस्ट बताएंगे भाई अगला गाना कौन सा है। तो गेस्ट पहले ये बताओ, ये धुरंधर का क्या टंटा है? तुमने तो फिल्म भी नहीं देखी, आई हो बड़ी तुम।
6: मैंने देखी हुई है, बट इट कैन बी काउंटेड एज ना ही देखना, मतलब उसी के बराबर है, बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट वॉच गोरी मूवीज, इट्स जस्ट टू मच फॉर मी टू अब्सॉर्ब। एंड फॉर सम रीजन आई एम सराउंडेड विद पीपल हु लव दीस काइंड ऑफ मूवीज एंड दे आर लाइक, नहीं तुम भी बैठ के देखो, व्हाई यू विल बी लेफ्ट आउट। एंड आई एम लाइक, अच्छा मैं जाके चिप्स ले आती हूँ, अच्छा मैं जाके आई कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट बहानास टू एस्केप, कि भाई कैसे ऐसे, स्पेशली दोस सीन्स, ओ माई गॉड, दे स्टे विद मी फॉर लाइक गुड लॉन्ग टाइम।
4: तो भाई धुरंधर स्टेज विद एवरीबडी फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम, तुम्हारे लिए फॉर अ डिफरेंट रीजन, हमारे लिए फॉर अ डिफरेंट वन। इसीलिए इनकी डिमांड पर गाना नंबर 12 हम धुरंधर का नहीं चलाएंगे। छाप तिलक येट अगेन, अंतरा कितने छाप तिलक बनेंगे यार, सीरियसली।
6: छाप रहे छाप, लाइक एक के बाद एक छापते जा रहे हैं,
4: छापे जा रहे हैं छाप तिलक, कितने वर्जन आ गए, स्पेशली इन द लास्ट 2 months ओनली देयर वर 2 versions व्हिच वर रिलीज। सो क्यों कर रहे हैं ये ऐसे, इनको छापने के अलावा कुछ और मिल नहीं रहा है। बट द सेम गोज फॉर तम्मा तम्मा एंड द सेम गोज फॉर ओए ओए एंड द सेम गोज फॉर Everything, right?
6: Literally, मेरी और रेणुका का तो वो भी हो चुका है, तू तू है, मैं रेणुका ने ये है तो मेरे पास ये वाला गाना, तो वापस से क्यों तू दे रही? मैंने कहा नहीं, ये दूसरी मूवी का गाना है लेकिन सेम गाना है।
4: चलिए तो सुनते हैं हम गाना नंबर 12 और वापस आते हैं फिर से येट अगेन धुरंधर को लेकर ऑन नंबर 11। स्टे ट्यून्ड।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 12।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: आ रहे हैं मैसेजेस, धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुड़ते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं अरे आज मस्ती टॉप चार्ट्स में ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है, लेबर डे मनाया जा रहा है और क्या।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
2: और इनको चाहिए था कि असल में एक लेबरर को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है टू सेलिब्रेट लेबर डे, तो वो लेबरर यहाँ पे बैठा हुआ है। मुझे सुबह ही शक हो गया था, लेकिन ना मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी कि मैं ना इनकी नजरों से नजर ही ना मिलाऊं, है ना, मैं साइड साइड से निकलती हुई जाऊं। और मैंने जैसे ही कि अच्छा ओके चलो हैव अ गुड वीकेंड, रेणुका कहती है हेलो आओ वीकेंड साथ मनाएंगे, वो धर दबोचा वही होता है आओ आओ लाइक लेट्स डू इट टुगेदर।
0: मैंने सारी मीटिंग्स फ्राइडे की रख दी है, जैसे जैसे कोई इंसान पतली गली से निकलता है नहीं नहीं नहीं अभी तो हमारी टीम मीटिंग है ना, अच्छा टीम मीटिंग में दो चार काम निकल आते हैं, देखो ये तो इसी हफ्ते करके जाना। आई रियली समटाइम्स फील कि मैं ना वैसी वाली बॉस बन जाती हूँ ना फ्राइडे, जस्ट बिकॉज आई नीड कंपनी टिल व्हाटएवर टाइम पॉसिबल। और इस गाने के पीछे अभी अंतरा और मेरी हो रही थी लड़ाई, क्यों भाई क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? रंग दिला
2: हम कसनी चल रही थी यहाँ पे इस गाने को। आई लव दिस गाना, लाइक आई लव इट। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी बार दिन में ये गाना सुनती हूँ, एंड दिस इज माय फेवरेट जिम ट्रैक, लाइक फेवरेट वन,
0: वो मैं मान सकती हूँ। Actually, you know what? I did not like it first time when I heard it, and then it gets stuck in your head, right? मतलब एक grower गाना कहते हैं ना, something that just grows on you, and then after a certain bit, you feel यार ये तो गाना चलना ही चाहिए, आप कहीं भी जा रहे हो नहीं?
2: True. It has the perfect mix of see recreation बहुत अच्छा है, इनके transitions to the gana to the rap portion coming back to the tirchi topi wale, it's insane. बहुत ही खूबसूरती से the music has been placed and played with as well. So after a very good long time, किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो मुझे इतनी खुशी हुई ना सुन के ये गाना, ऐसा वाला फील हुआ।
0: अंतरा ने मुझे बोल दिया है कि ये नंबर 11 पर कैसे हो सकता है, इस टीचर से पेपर्स दोबारा से रीवैलिडेट कराओ, टीचर से भी चेक कराओ, क्योंकि ये बच्चा डेफिनेटली टॉपर है, राइट?
2: हाँ, मैंने भेज दिया है।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 11।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: Welcome, welcome, welcome back, welcome back. Antra, मुझे ना somehow आज तू मिल गई है यहाँ पे, तो I really want to talk about this हरकतें of दीपिका पादुकोण. Okay, I know कि मेरे सारे सुनने वाले हर बार उसके बारे में एक आध चीज मेरे से सुन लेते हैं और फिर बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है तेरी उससे. तो चल आज मैं तेरे साथ डिस्कस करती हूँ. They are fresh, they are hot, they are spicy and they are happening. Join us on Musty Top 20. उसने अभी तक अपने हस्बैंड को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया जबकि आलिया ने ऑलरेडी रामायण के लिए रणबीर कपूर को किया, बाकी सबने किया, लेकिन इस औरत ने बाहर आके ये बोला, मैंने तो तुम सबसे पहले ही देख ली थी.
3: मतलब देखो, बहुत मेरा जिंदगी का भी बहुत सिंपल सा फंडा है एंड ये मैं हर किसी पे अप्लाई करती हूँ कि पति पत्नी के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए.
2: अच्छा अच्छा.
3: कभी किसी का बाला नहीं हुआ है उस चीज में और मैं यहाँ पर भी वो अप्लाई करना चाहती हूँ. भाई वो उन दोनों के बीच की बात है, उसने कि मतलब करा भी होगा तो आई डोंट थिंक सो शी इज लायबल टू गिव जस्टिफिकेशन टू द दुनिया दैट शी हैज टू डू ऑन सोशल मीडिया.
2: देखिए देखिए, जब बाकी सारी चीजें ये सोशल मीडिया पर करती हैं, जैसे कि दी अनाउंसमेंट ऑफ हर सेकंड प्रेगनेंसी, फिर वो भी अपने हस्बैंड को ही अकेले में बता दे, वो हम सबको बताने की क्या जरूरत है, दिख जाएगा ना हमको.
3: बट ऑल्सो द फैक्ट दैट ये लोग ना, इनकी पीआर एजेंसीज इनको ज्यादा चलाती है, इनसे भी ज्यादा.
2: लेकिन ये एक बार मुंह से ये नहीं बोलेगी कि पीआर एजेंसी ही गलत थी. चलो ठीक है, पीआर एजेंसी ही सही, पर गलत चीज तो गलत ही है. अब भी जब लड़के को सारी लाइमलाइट मिल रही है तो इसको आके इसी टाइम अनाउंस करनी है अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी, ताकि फिर से लाइमलाइट जाए कहाँ, दीपिका पादुकोण पर. गाना नंबर 10.
3: जी, ये ऐसे ही ये षड्यंत्र रचने वाले लोग होते हैं जो बेचारे बेचारी लड़की को आराम से जीने नहीं दे रहे हैं.
2: अच्छा?
3: इतनी मतलब हाँ, और क्या,
2: बेचारी
3: मतलब, लड़की बेचारी लड़की.
2: और जब इस बेचारी लड़की की शादी को एक साल हो गया था और एक दूसरी बेचारी लड़की की शादी हो रही थी, तभी इसने अपनी एल्बम के सारी छुपी हुई फोटोज भी बाहर डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, सडनली सारी अटेंशन लेने के लिए. ना तो इसको कारवां की तलाश है, ना इसको हमसफर की तलाश है, इसको सिर्फ लाइमलाइट की तलाश है. क्यों भाई?
3: हाँ तो दोनों अपनी अपनी तरीके से लाइमलाइट ले रहे हैं ना. कौन हमारा रणवीर सिंह थोड़ी ना कोई भोला बाबू है.
2: He deserves it. Okay? He totally deserves it.
3: Oh my god! Look at her face. He deserves it and okay.
2: जा रही हूँ मैं. मैंने इस घंटे बात ही नहीं करनी. जा.
0: Trending song number 10.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
3: Trending song number 9.

0: वैसे मैंने कहा था कि मैं इस घंटे वापस नहीं आऊंगी, लेकिन एक गाना और बताना था, और दूसरी बात मैं धुरंधर की बात ही नहीं करने वाली हूँ इस बार, मैं सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार की बात करने वाली हूँ।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉक।
2: भाई अच्छा ठीक है चलो, इनका शो है भाई, ये भी एक रूल बनाना चाहिए जिसका शो है कभी कभी उसके हिसाब से भी चल लेना चाहिए। मोर्चा खड़ा करने के लिए तो बहुत दूसरे शोज भी है।
0: हाँ ये थी धमकी, इन अ वेरी सटल वे दिस वाज द धमकी कि बेटा फ्राइडे इवनिंग इसको करने दे, कहीं इसे करने से मना कर दिया तो वो भी मेरे सिर पे पड़ेगी। मान जाओ इसकी बात।
2: इसीलिए आई लव हर, लाइक शी गेट्स इट।
0: हाँ बेटा आई डेफिनेटली डू। तो चलिए बात मैं कर रही थी कि यहाँ पर अक्षय कुमार की, अंतरा आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी येट बट भूत बंगला सीम्स टू बी डूइंग अमेजिंग एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अमेजिंग का जो डेफिनेशन है ना, दैट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स। मतलब धुरंधर हैज चेंज्ड द मीनिंग ऑफ अमेजिंग। 1500 करोड़ की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अभी 80 करोड़ पहले हफ्ते में हुआ तो सब कह रहे हैं हिट हो रही है फिल्म, हिट हो रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है अक्षय कुमार के बारे में?
2: अक्षय कुमार आई थिंक, मेरे को कभी कभी लगता है कि भाई ये इसका मोटिव दूसरा है। ही इज नॉट इनटू कि अच्छा चलो इतनी सारी कर ली, अगर कोई एक हिट हो गई बट भाई नोट तो छाप रहा है जबरदस्त, चाहे कुछ भी कर लो। एंड करंट सिनेरियो अगर देखो आप सभी एक्टर्स एक्ट्रेसेस का, सबसे ज्यादा नोट तो भाई हमारा खिलाड़ी ही छाप रहा है।
0: सही बात है। और अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ डिंपल का इंटरव्यू आ रहा था, कहती बहुत शरारत करता है, मेरे साथ ही करता है। तो मैंने कहा भाई तेरे जैसी सास हो तो कौन सा दामाद नहीं करेगा शरारत, हद हो गई। And that is Gaana Number 8 right now playing this hour on Radio Masti 24/7. जी हाँ, stay tuned. 7 से लेकर 1 तक की जो हमारी जर्नी है वो अब
2: guess
0: करो, हम घर जाते हैं।
3: Trending song number 8.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स, मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009।
1: आइए जी, आइए हमारे तीसरे घंटे में। आ देखो ना, तभी तो मैं कहती हूँ साथी, मिल के अगर हम अपने दुख और सुख बांटेंगे तो ऐसे वक्त निकल जाएगा, ऐसे।
2: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: अंतरा यहाँ पर ऑन मस्ती टॉप चार्ट्स। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज अंतरा, आज तुमने रुकने का फैसला किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत।
3: As if I had option, but मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही क्लियरली सबको कि आज मैं लेबरर जरूर हूँ, बट मैं आज गेस्ट हूँ आज की शो के लिए। तो वो बीच बीच में वो एक एक एक दो एपिसोड में जो ऐसे गेस्ट आता है ना, बस वैसा ही, जस्ट टू बी क्लियर। बट टॉकिंग अबाउट धुरंधर, डिड यू नो दैट हमारे, देखो धुरंधर वन जब आई थी तो खन्ना साहब हमारे फेमस हो गए थे, फ्लिपराची करते हुए। जब धुरंधर 2 आई तो हमारे राकेश बेदी सर का जो है चार्म एंड जादू एंड द वे ही डिलीवर्ड द डायलॉग, वो अलग लेवल पे पहुंच गया। एवरीबडी लव्ड हिम एंड ही काइंड ऑफ बिकेम अ ट्रेंड सेटर, समथिंग लाइक दैट। ओके, हुआ कुछ ऐसा दैट धुरंधर 1 और 2 के लिए आपको पता है उनको कितना पे किया गया था?
1: कितना?
3: Only 50 lakh.
1: Oh really? Oh, he is like the backbone, the foundation, everything of this film, man. Come on. Okay. True. Then
3: now after जब इनका उतना ज़्यादा इतना you know trend हो गया और उसके बाद धुरंधर के दोनों इतना सारा success के बाद recently he again received 1 crore का check because धुरंधर became such a huge success.
1: See, but that is why I love Aditya Dhar. मतलब he is a very fair guy, right? उसको पता है फिल्म इतनी अच्छी कर रही है, वैसे तो 1 crore से ज़्यादा देने चाहिए थे, but चलो कोई ना. अब नेक्स्ट इज गाना नंबर 7, वन ऑफ माय फेवरेट्स गाइस। जब सिर दर्द होता है तो वो भी इसी गाने से होता है, और जो सिर को आराम मिलता है वो भी इसी गाने से मिलता है। व्हाट डू यू थिंक अंतरा?
3: No, true. But in either way, I love all songs of Dhurandhar 1 and 2. Meko, chahe wo slow wale ho ya phir beats wale ho, they have really, really put in some work into it.
1: Absolutely. Picture nahi dekhi isne puri chain se.
4: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
5: Check it out.
4: Trending song, number 7.

0: close to me? Or is it all destiny? Destiny, don't lie to me.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर,
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी क्या बात जी,
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
3: इट्स टाइम फॉर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
4: तुमको लेकर
3: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
5: मुझे चांद पे ले चलो।
3: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
6: रात अकेली है।
7: जोश में रहो।
8: Alright, coming back on Radio Musti 24/7 इस समय Musti Top Charts पर चल रहा है, बिल्कुल रेणुका और अंतरा का साथ। ओहो हो, आपका तो लेबर डे भी मतलब कितना प्यारा हो गया है।
9: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musti Top
8: Charts। क्यों अंतरा, सही बात है कि नहीं?
10: लकी यू पीपल, लकी लकी बहुत ही ज्यादा किस्मत ही खुल गई आज आपकी। बोनस बोनस लेबर डे वाले।
8: सही बात। आपको पता है मतलब एक इंसान अगर है जो मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, हम बोलते थे ना कि जब तक अच्छा हाँ। समय चल रहा है भाई मतलब निकल पड़ो, दैट इज राकेश बेदी। आई एम नॉट सेइंग ही डजंट डिजर्व टू डू इट, बट दिस गाय इज एवरीवेयर। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इनको हम नहीं देख रहे। कोई पॉडकास्ट हो, कोई मतलब न्यूज हो, कोई किसी भी बात में ज्ञान देना हो, राकेश बेदी मतलब क्यूटली इज लाइक एवरीवेयर। बच्चा है तू मेरा, बच्चा है तू।
10: ट्रू, बट ऑल्सो इट इज वही बात हो गई ना कि अभी चल रहा है टाइम टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज यू नो नेवर नो कि इसके बाद ऐसा कुछ मोमेंट उनको वापस से मिलेगा कि नहीं। सी, राकेश बेदी इज अ लेजेंडरी एक्टर, कितना काम कर चुके हैं, लाइक ही हैज टन्स एंड टन्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट आफ्टर सो मेनी इयर्स it's like 2026 and this is when he's being talked about, so I'm sure that he is also emotionally us tarah se wo feel kar rahe honge ki durandar ne hi meri, you know, itne saalon baad mere kaam ko recognition mil raha hai. Log purane kya hota hai, purane unke sare jitne roles hai, characters hai, unke bare mein baat kar rahe, they are revisiting his old times and works.
8: Absolutely.
10: Which might have got ignored at some point of time.
8: बिल्कुल, 3,500 करोड़ मतलब दोनों फिल्में मिला के, एंड दिस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट, यू नो, नॉट इवन कवरिंग ऑल कंट्रीज, बट अमेजिंग। अभी आप सोचो मिडल ईस्ट में तो रिलीज भी नहीं हुई है और क्या क्या बातें चल रही हैं। बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, उन वो हर कैंपेन में भी दिख रहे हैं इस टाइम पर, और उनका ज्ञान ऐसा लग रहा है कि सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट ज्ञान इज कि भाई सोसाइटी को डिवोर्स्ड वुमन की तरफ अपना नजरिया बदलना चाहिए, ढोल ताशे के साथ में घर वापस लाओ अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अगर उसका जिंदगी शादी के बाद अच्छी नहीं चल रही है तो। आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज दैट ही इज सेंडिंग अक्रॉस, राइट? एंड इसी बात पर अगले दो गाने कौन से हैं? दैट इज गाना नंबर 6, फिर से नैना। मेरा भी दिल नहीं मान रहा कि अंतरा चली जाए फ्राइडेज को। मैं भी वारी जाऊंगी अगर ये हर फ्राइडे को मेरे साथ रुकेगी। ऑन वीडियो मस्ती गाइस, घर नंबर 6 और 5।
10: अंतरा एग्जिट्स द चैट ग्रुप।
8: अंतरा इज एडेड अगेन बाय एडमिन।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 6।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: Trending song number 5.

0: as the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti Pe Bhakti, subah 6 baje se. यार अंतरा, मैं तो ये सोच रही हूँ, अभी अभी तो जामनगर में हैप्पी बर्थडे मनाया गया था अंबानी जी के बेटे का, अभी फिर से क्या होने वाला है? कहाँ हैं वो वाले करोड़पति जिन्होंने रिहाना को फिर से भारत बुलाया है? भाई,
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20.
2: कितना फनी सा इन लोग का डिस्कशन होता होगा ना इन लोग के घर पे, कि कुछ भी एक नॉर्मल सा मुंडन का फंक्शन करना है, ठीक है? क्या करे, रियाना को बुला ले, रियाना, अरे अपनी बुला ले उसको.
0: और तो और फोन उठा के, री तुम आ सकती हो? पर वो भी of course अंबानी, I'll be there अंबानी, I'll be there अंबानी. पहले तो उसको पता भी नहीं था अंबानी है कौन, जब उसको पहली बार बुलाया था उसको पता भी नहीं था. वो पूछ रही थी इंडिया से कौन सा गरीब स्लम डॉग मिलियनेयर मेरे को बुला रहा है, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन. उसके बाद वहां गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये भारत है, ये है क्या ये जगह, बताओ.
2: अरे तो उसमें रेणुका, कल को मुझे अंबानी को तो मैं भी नहीं जानती, ठीक है, लेकिन कल को कोई मुझे करोड़ों का चेक थमा के बोल रहे की आके तुम यू नो फॉर एग्जाम्पल होस्ट कर दो, मैं काम अंबानी, मेरा बेस्ट फ्रेंड.
0: हाँ, वो बात तो ठीक है, पर फर्क ये है,
2: मैं वो मुझे फॉलो जो बुलवाना है बुलवा दो, चेक दे दो पहले.
0: अंबानी को तू भी नहीं जानती, वो भी तुझे नहीं जानता, लेकिन वो रिहाना को जानता है. एंड द न्यूज इज कि रिहाना फिर से इंडिया आई है, और क्योंकि वो इंडिया आई है, सभी लोग एयरपोर्ट से जब उसको देखे बॉम्बे में तो बोले कि भैया ये क्या करने आई है, व्हाई आर यू इन इंडिया, और मतलब लोग ट्वीट कर रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, समवन टेल मी, समवन टेल मी. तो अब सबको ये लग रहा है कि भैया ये किसकी शादी पे आई है, पर शादी ना सही, देयर सीम्स टू बी सम प्रमोशनल पॉप अप, प्रोबेबली दैट्स व्हाई शी इज हियर. वो भी अपना कार में बैठ के अपना फोन निकाल के सारे क्राउड की वीडियो ले रही थी, बिकॉज कहां उसको ऐसी ऐसी किस्मत मिलती है सड़कों पे, है ना, अमेरिका में. जैसे एक बार जब जेंडाया आई थी तो सारे एयरपोर्ट पे झंडिया झंडिया लुके झंडिया कर करके बुला रहे थे. पता नहीं, लेकिन हम करेंगे जरूर, क्या बात है. ऑन रेडियो मस्ती गाइस, नेक्स्ट गाना. आरी आरी आरी नहीं, आ गई है रिहाना इंडिया में, क्या कर रही है ये बाद में बता रही है.
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 4.

0: आइए आइए आइए. और जैसा कि हमने कहा था, बस लास्ट के तीन गाने आपको बता के हम चल जाएंगे. अगली बार हम बताएंगे कौन जीता है, कौन जीता है.
1: They are fresh, they are hot, they are spicy, and they are happening. Join us on Masti.
0: यार अंतरा, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, घर कब आओगे को टॉप थ्री में लेकर आओ यार. दिस इज नॉट फेयर.
2: ये इनके अंतरा आत्मा पुकार पुकार के कह रही है. उसमें डाल दो भाई. बड़ी मुश्किल से ये मानी है टॉप थ्री पे. मैं तो इनको टॉप टेन से बोल रही हूँ कि 10 गेस कराते हैं. फिर वो मैं सात पे लेके आई. फिर सात पे नहीं मानी. फाइनली तीन पे हमारी मांडवी हुई है.
0: जी बिल्कुल. तो अब तीन गाने कौन से हैं आपको हमें बताना है कि आज का गाना नंबर वन कौन सा है.
3: वो सारियां वे सर गया रामा वे खेड़े पासे जाइए.
0: What a beautiful track. My God, soulful, romantic. दिल टूटा हो, जुड़ा हो, कुछ भी हो, ये सुनो. भाई साहब, और इस समय मन करता था जाके हमजा अली मजारी के गले लग. तू मेरे घर से, तू केड़े पास से, तू मेरे पास से आया. That is जान से गुजरते हैं. जी हाँ भाई साहब, मैं चीखे मार के पानी ना करने की कोशिश भी करूं तो कभी नहीं हो पाएगा, इस जन्म में तो नहीं. और भी ज्यादा गहरा हो गया ये वाला सवाल कि कौन बनेगा नंबर वन आज के दिन में. क्या लगता है आपको, हमारी जो गेस्ट आई हैं उनसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है.
2: मैं मेरी चेष्टा पूरी ये है कि आज तो कुछ तूफानी करते हैं.
0: अच्छा, इस तरह से तूफानी. हाँ. आते ही तूफानी. तुम्हें एक हफ्ता और आना पड़ेगा और अगर तुम्हें तूफानी करना है तो, इतना हम बता सकते हैं तुमको.
2: ये क्या बात हुई, मतलब अभी तो अपने गेस्ट बोला ना, अतिथि भगवान होता है.
0: हाँ, तो भगवान पहले आके सेटल होता है, अगली बार कुछ बदलता है ना जिंदगी में.
2: कन्वीनियंस वाला भगवान है.
0: देखो भाई,
2: अभी इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम.
0: आप सब हमें लिख के बताओ कि आपको ये गेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए अगले फ्राइडे. आप जैसा कहोगे, क्योंकि हमारे तो भगवान हमारे सुनने वाले.
2: नहीं, भगवान इज वेरी हैप्पी. भगवान बहुत खुश है.
4: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 3.

0: मैंने एक बार जब शाहरुख खान से बात करी थी और कहा था कि आप अपनी फिल्म इस फिल्म के साथ में रिलीज करेंगे या उस फिल्म के साथ में, एंड ही सेज देखो रेणुका 52 वीक्स होते हैं साल में, राइट? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ 52 फिल्में बनती है, हमारी तो फिल्में कई ज्यादा बनती है, तो कोई ना कोई क्लैश तो होगा एट द बॉक्स ऑफिस, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो जिंदगी में. वाह, सच अमेजिंग वर्ड्स. दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप. तो भाई इम्तियाज अली का भी यही कहना है कि धुरंधर जैसी फिल्म जो है, और कुछ करे या ना करे, क्लैशेस गए साइड पे, लेकिन दे हैव एक्चुअली ब्रॉट बैक पीपल टू दी सिनेमाज एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. एंड व्हाट मैटर्स राइट नाउ इज नंबर 2 और नंबर 1. क्यों भाई अंतरा, क्या सोचा है?
1: ये जो है ना, ये मान नहीं रही. ये मान नहीं रही.
0: क्या नहीं मान रही?
1: गलत हो रहा
0: है. क्या नहीं मान रही?
1: गलत हो रहा है.
0: क्या नहीं?
1: मैं तो कहती हूँ तू फनी करते हैं. नंबर 1 भाई, जनता आप बताओ, नंबर 1 चेंज होना चाहिए ना, है ना, है ना? सब यस बोलो. हाँ अंतरा सही है, लिख कर 9151896 पर आओ, यहाँ पर आंदोलन शुरू करते हैं.
0: देखो अब क्या ही चेंज हो सकता है. दो गाने हम ऑलरेडी बता चुके हैं कौन से वो, या 50% लोग बोलेंगे ये 50 वो. और मैंने ये दोनों गानों की एक्चुअली लड़ाई पिछले कुछ हफ्तों से चल रही है, कभी एक ऊपर कभी दूसरा ऊपर. तो फिर अंतरा पढ़ती तो मुझे एंड में हर शो के है, ठीक है? तो आज एक काम करते हैं, आज बोलते हैं कि अंतरा ने सिलेक्ट किया है गाना नंबर 1, जिसने जो कहना है इसके नाम मैसेज भेज दो 9151896 3. दोनों गाने हैं
2: सारिया विसर गया रामा वे
0: खेड़े पासे जाइए सजना, तुसी मेरे पासे आओ सजना, एंड अगर ये मस्ती मैडनेस होता तो मैं कहती कि कौन चीख रहा है गहरा हुआ गहरा हुआ. फिलहाल के लिए जाने का टाइम हुआ. क्यों अंतरा?
1: टोटली बहुत बहुत ही मजा आया, बट बहुत ही ये जो फ्राइडे वाली शाम है, आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड ये जो लेबर डे स्पेशल आपने सुना लेबरर के साथ विद द सेलिब्रिटी होस्ट, जो यहाँ पे अब हम दोनों ही घोस्ट बनने वाले, घोस्ट बन के वी आर गोइंग टू जस्ट डैश आउट ऑफ दिस प्लेस.
0: बिल्कुल.
1: हाँ, क्योंकि अब हमारा वीकेंड भी शुरू होगा.
0: हाँ, लॉन्ग ना सही शॉर्ट ही सही, बट हमारा भी शुरू हो रहा है ऑन रेडियो मस्ती. गाइस हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ द वीकेंड एंड डोंट फॉरगेट टू लिसन टू द एनकोर ऑन संडे इवनिंग. फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, अंतरा भी यहाँ से जा रही है, और हम आपको ये कह रहे हैं कि ये गाने आप सुने बैक टू बैक, नंबर 2 नंबर 1, एंड ऑफ कोर्स वी विल मीट यू ऑन मंडे. टेक गुड केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग अस एंटरटेन्ड विद योर मैसेजेस थ्रू द इवनिंग. हम उन सब का जवाब दे चुके हैं. बाय बाय.
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 2.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
3: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव हैव अ मस्ती भरा वीकेंड

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Yo!

0: दस का बीस।
1: अरे अरे अब बस 10 दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Musti 24/7 live.

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: रात अकेली है
4: तो क्या हम तो आपके

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम तो

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
0: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: As you say, sunshine.
1: Sunshine? कहाँ से ढूंढकर लाते हो तुम ये सब प्राचीन words?
0: जहाँ से मैं आया हूँ.
1: ओ, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
0: प्यार.
1: Just a tip. हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?

message, eh?

0: जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगलू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

आशा पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा, मुझे मन में बसा ले, पल पल पल तू में छुपा ले, तू चटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, वो जर्रा कर

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति में सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

क्या गाना है, वाह वाह वाह। लेकिन आज के इस शो की शुरुआत करते हैं एक थॉट के साथ कि दैट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। ये लाइन हम सब ने बचपन में काफी सुनी हुई है, स्कूल के मॉरल साइंस के पीरियड में, किसी स्टोरी बुक में, बट ऑनेस्टली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी आर स्टिल लिविंग बाय इट, राइट? एंड स्पेशली इस आवाज को सुनकर तो आपको यकीन हो जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपका बहुत स्वागत है। लॉन्ग वीकेंड कैसा रहा, लेडीज एंड जेंटलमैन? यस, दिस इज द मॉर्निंग शो, लेकिन आज मॉर्निंग शो में यस रेनुका नहीं है। कभी किसी दोस्त को 2 बजे रात को कॉल किया हो, कभी बिना रीजन के, यू नो, किसी ने बस पूछ लिया हो कि जस्ट तू ठीक है, दैट राइट देयर दैट्स रियल फ्रेंडशिप, राइट? और तू ठीक है के बाद, अच्छा अगर तू ठीक ही है ना तो एक काम कर सकती है क्या? नहीं, मैम, जस्ट किडिंग, ओके। वेल एनीवेज, यस, आपने बिल्कुल सही पहुंचाना, इट्स नॉट रेनुका हु इज गोइंग टू टेक यू थ्रू द नेक्स्ट 3 आवर्स। दिस इज आपकी एंट्रा राइट हियर और आज का द मॉर्निंग शो माय स्टाइल मेरे हवाले, एब्सोल्युटली, बिकॉज एज आई ऑलवेज से द मॉर्निंग शो इज अ परफेक्ट स्टार्ट टू द न्यू वीक। इट्स लाइक आपका न्यूज पेपर बट ऑन रेडियो। हफ्ते की शुरुआत में वी ब्रिंग यू काइंड ऑफ एवरीथिंग। गुड मॉर्निंग सपना जी। वेल, एंड ये भी अच्छा होता है कि मतलब आपको सिर्फ सुनने की जरूरत है, राइट? ग्लोबल अपडेट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, वी टेक अ क्विक क्रिस्प लुक एट इट विदाउट ओवरलोड। कोई ज्ञान नहीं, जस्ट वॉट यू need to know before you step into your day. So whether aap drive kar rahe ho, working out, making the first cup of aapki chai, I am right here with you, okay? Let's start this Monday ka journey saath-saath mein on Radio Masti 24/7 Alive. Beautiful, beautiful gaane ke saath, beautiful main aur beautiful aap bhi. Good morning.

0: जब घर की याद आए ggmartonline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवघर रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट ggmart. ऑर्डर नाउ एट ggmartonline.com और कॉल 8085657.
1: बाजू
2: ट्रैफिक अपडेट.
3: Oh, that's right. You can get देवगढ़ और रत्नागिरी के आम जो है वो ggmartonline.com से बिल्कुल आप ऑर्डर कर सकते हैं. इनफैक्ट इफ यू आर ट्यून्ड इन राइट नाउ एंड आप उसको ऑर्डर करते वक्त न्यू 10 NEW10 ये वाला कोड डालते हो तो आपको डिस्काउंट भी हाथों हाथ मिल जाएगा, है ना. कमाल की खबर सुबह सुबह 7:30 बजे ट्रैफिक अपडेट से जस्ट पहले. चलिए जानते हैं फिलहाल के लिए सिंगापुर के सड़कों का क्या है हाल चाल. व्हीकल breakdown aapko milega on ECP towards Changi after Siglap Road. Heavy traffic ki khabar on PIE towards Tuas at Chirong Town Hall Road exit. Aur milega vehicle breakdown on ECP towards City after KPE TPE. So avoid lane number 5. Isi ke saath saath agla gaana है ना, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि ये गाना कब प्ले होगा क्योंकि प्लेलिस्ट में तो मैंने पहले से ही लगा रखा था. ब्यूटीफुल वन ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. दिस इज द मॉर्निंग शो. स्टे ट्यून्ड.

Now, tensions, Johair, between Iran and the United States are still evolving, and there is this small diplomatic movement which is kind of coming in. Iran, Johair, unhone kaha hai that it has received a response from the US to its latest proposal for talks, and ye jo response hai has actually been sent through Pakistan acting as a mediator. Ab ye proposal kya hai? Iran ne ek 14-point plan diya hua hai, which basically focuses on ending the ongoing conflict and stabilizing the region. Is plan mein kuch key demands hai like lifting of sanctions, release of frozen Iranian assets, U.S. military withdrawal from the region, and also easing blockades jo hai affecting shipping routes. Aur ek important angle ye bhi hai that Iran wants discussions on nuclear issues to happen later. So pehle focus ho on the ending the conflict and restoring the normalcy. Now from the U.S. side ki agar baat ki jaye to President Donald Trump jo hai has confirmed that he is reviewing the proposal, but honestly he's sounding quite skeptical. उनका कहना है कि ईरान ने अभी तक यू नो इनफ प्राइस पे नहीं किया है एंड ऑल ऑप्शंस इंक्लूडिंग मिलिट्री आर स्टिल ऑन द टेबल. सो यस, द टॉक्स आर स्टिल कंटिन्यू टू हैपन, बट ट्रस्ट लेवल काफी सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इस ऐसे केसेस, बिकॉज दिस कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो लिंक टू द शिपिंग रूट्स एज वी नो, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल. सो जो भी यहाँ पर डिसीजन होता है उसका इम्पैक्ट सिर्फ रीजन तक लिमिटेड नहीं है, इट इफेक्ट्स द ग्लोबल इकोनॉमी, फ्यूअल प्राइसेस एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी एज वेल. सो फॉर नाउ वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे डायलॉग हैज स्टार्टेड, बट रेजोल्यूशन इज स्टिल अनसर्टेन, एंड लाइक ऑलवेज जैसे जैसे जो जो अपडेट्स आते हुए जाएंगे, वी विल मेक श्योर दैट वी कीप इट सिंपल एंड कीप यू updated on that, right? So bhai yahan par Yogesh ji jo hamare hai wo bilkul aho ji karte hue Monday morning par hamare sath jud chuke hai. Dheere dheere everybody is kind of joining in, tuning in, and hope you have a good Monday ahead as well. That's what I'm making sure of on the morning show on Radio Masti 24/7 live. Good morning.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से

एंड यस, ये बातें करते करते हम लोग बिल्कुल 8 बजे के उस पार पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ। दिस इज द मॉर्निंग शो एंड धीरे धीरे करके सब लोग जाग रहे हैं एंड इट हैपेंस लाइक आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड बनता है, बिल्कुल बनता है। हमें उतना फील नहीं हो रहा है बिकॉज हमने कोई लॉन्ग वीकेंड मनाया नहीं। हमारे लिए यूजुअल वी किक स्टार्टेड आवर मंडे लाइक अ रेगुलर मंडे इटसेल्फ। वेल बट टुडे I think is a big, big day India ke liye. It's May the 4th. Be with you. Why did I say that? Well, ab kuch hi ghante ka jo hai intezar hai. Dheere dheere jo hai political suspense across 5 key battlegrounds in India: West Bengal, Tamil Nadu, Assam, Kerala, and Puducherry. It is about to unfold vote by vote. Now, after weeks of these intense campaigning and sharp exchanges and the rallies and the road shows and a very, very strong voter turnout, aaj jo hai sabki nazar ek hi jagah par hai. Those sealed EVMs kept under tight security jahan se niklega final verdict. Now, counting jo hai wo bilkul karke aaj aisa pata chalega ki, yeah, ab waise to dono side ki parties jo hai sab apne अपने कॉन्फिडेंट क्लेम्स दे रहे हैं, टेंशन भी काफी हाई है, एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई है, बट आज का रिजल्ट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड नहीं करेगा। इट विल आल्सो गिव अ क्लियर सिग्नल ऑफ द लार्जर नेशनल पॉलिटिकल मूड एज वेल। Let's quickly take a look at the big states. West Bengal jo hai remains the most intense battleground, jahan pe BJP and Trinamool Congress jo hai dono taraf se kafi aggressive claims aa rahe hain. Tamil Nadu, if you see, to DMK led alliance jo hai is expected to continue in power. Exit polls and turnout dono unke favor mein filhal ke liye kaha ja raha hai dikh rahe hain. Assam agar dekha jaye, it sees a straight fight, BJP looking for another term while Congress jo hai is pushing hard for a comeback. Kerala हमेशा की तरह काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ एक पैटर्न रहा है गवर्नमेंट्स का अल्टरनेट होने का, लेकिन इस बार रूलिंग एलडीएफ जो है इज ट्राइंग टू ब्रेक दैट ट्रेंड। एंड पुदुचेरी की अगर बात की जाए, स्मॉल इन साइज बट स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे बीजेपी लेड एनडीए और कांग्रेस का डीएमके अलायंस के बीच क्लोज कॉन्टेस्ट जो है एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, स्पेशली आफ्टर अ वेरी हाई वोटर टर्न आउट। सो यस, द स्टेज हैज बीन सेट, सिक्योरिटी काफी टाइट है, एंटिसिपेशन जो है वो बिल्ड हो रही है। सवाल सिंपल है कि कौन करेगा अपना अपना ग्राउंड होल्ड, या वोटर्स जो है चेंज को चूज करेंगे। सो ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट गेटिंग दोज आंसर्स सीट बाय सीट, राउंड बाय राउंड आज की डेट में। सो देखते हैं क्या होता है। रेडियो मस्ती 24/7 अलाइव पर जैसे जैसे जो जो जहां जहां होता जाएगा, वी शैल कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। दिस इज द मॉर्निंग शो एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज अ मूवी विच अपेरेंटली डिड नॉट डू दैट वेल, बट यस, दिस पर्टिकुलर गाना ब्रॉट बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज, डेफिनेटली। लेट्स गो।